कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

आज डॉक्टर आडकर जी की 111वीं जन्मतिथि है और इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर आडकर जी का मैं 1967 से 1971 तक विद्यार्थी रहा हूँ। उसके बाद भी पीएचडी के संदर्भ में मैं उनसे मिलता रहा हूँ। डॉक्टर आडकर जी हिंदी और उर्दू के प्रकांड पंडित थे। एक प्रसंग उन्होंने बताया था, एडिशनल या विषय के रूप में उर्दू विषय हिंदी के साथ चुना था उन्होंने, और उर्दू की परीक्षा देने के लिए उस समय विद्यापीठ में जब वे गए तो विद्यापीठ में जाने के बाद धोती कोट टोपी पहने हुए वो पहुँचे। उर्दू के विद्यार्थी वहाँ पर जो परीक्षा देने के लिए थे, उन्हें लगा कि शायद ये गलती से यहाँ पर आ गए हों, शायद इनका संस्कृत विषय हो या और कोई हो। तो किसी ने पूछा उनसे कि आपका ये विषय है, तो उन्होंने कहा जी हाँ मेरा यही विषय है और उर्दू का पेपर देने के लिए यहाँ पर मैं आया हूँ। ये सुनकर सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य तब भी हुआ जब वे उर्दू के उस पेपर में पूरे विद्यापीठ में प्रथम आए थे।

0: आज गुरुवर्य डॉक्टर एस के आड़कर, जो कि हमारे प्रथम गुरु रहे, पदवी का अध्ययन अहमदनगर कॉलेज में लगभग 56 साल पहले, उस समय मैं गुरुवर्य जी का छात्र रहा पूरे 4 वर्षों तक। आज आड़कर जी की 111वीं जयंती है। एक छात्र के रूप में आज जो भी मैं हूँ, बहुत सारा प्रभाव गुरुवर्य जी का है। उनके संदर्भ में बहुत सारी यादें आज भी मन में उठती हैं। और जहाँ तक मेरी अपनी आज की स्थिति, आज मैं 80 साल का उनका प्रथम छात्र हूँ अहमदनगर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का। जब पदवी का अध्ययन पूर्ण हुआ, तब उम्र केवल 20 साल की थी और समझ में नहीं आ रहा था कि पदवी प्राप्त करने के बाद, हिंदी विषय में पदवी प्राप्त करने के बाद आगे क्या किया जाए। 1967 की बात है और तब उन्होंने कहा कि आपकी उम्र बहुत कम है, आप लगे हाथों पदव्युत्तर अध्ययन भी पूर्ण कीजिएगा ताकि आगे चलकर आपको उदर निर्वाह की दृष्टि से अधिक फायदा हो सकता है। आप पदव्युत्तर अध्ययन के बाद और अच्छे गुण प्राप्त करने के बाद हिंदी विषय के प्राध्यापक हो सकते हो। तुरंत मैंने 2 वर्षों की हिंदी विषय की पदव्युत्तर उपाधि प्राप्त की पुणे विश्वविद्यालय में, और उसके बाद तुरंत हिंदी का एक शिक्षक और बाद में प्राध्यापक और अंत में प्राचार्य के रूप में मेरा आना हुआ। यह सारी कृपा डॉक्टर आड़कर जी की है। आज इस निमित्त मैं उनका स्मरण करता हूँ और उनके प्रति आदरांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद।
1: आपली सजगता एखादी मुलगी किंवा मुलावर होणारे लैंगिक अत्याचार रोखू शकते।
2: एखाद्या लैंगिक अत्याचार ग्रस्त मुला मुलींचं आयुष्य तुम्ही वाचवू शकता।
1: अशी कोणतीही अनुचित बाब आपल्या निदर्शनाला आली तर तात्काळ संपर्क साधा स्नेहालय संचालित स्नेह बाल आधार प्रकल्पाशी।
2: 77727505 किंवा 90110 26495 या मोबाईल क्रमांकावर
1: आम्ही अहोरात्र उपलब्ध आहोत।
2: माहिती देणाऱ्याचं नाव उघड केलं जाणार नाही।
1: अधिक माहितीसाठी संपर्क साधा लैंगिक अत्याचारग्रस्त बालकांच्या संरक्षण कायद्यानुसार कार्यान्वित स्नेह बाल आधार प्रकल्प, घनश्याम अपार्टमेंट, दत्त बेकरी समोर, चितळे रस्ता, अहिल्यानगर।

0: रेडियो नगर 90.4 FM आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 FM वर।

0: श्रोते मित्र हो नमस्कार. थोड्या गप्पा थोडी गाणी या शो मध्ये मी आर जे आदी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. तर श्रोते हो, आजचा आपला पहिला सेगमेंट आहे पिक्चर अभी बाकी है.
1: क्या नाम क्या है तुम्हारा?
2: मेरा नाम विजय.
3: दीनानाथ जॉन.
2: तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ.
3: कौन है तुम?
4: रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं. नाम है शहंशाह.
5: डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन.
6: आज तुम्हें मरने से डर नहीं लगता?
7: खुश तो बात है.
8: जिसने 25 बरस अपनी मां
9: अभी वो बंदूक की नहीं बनी जिससे हमारा
10: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं पड़े.
11: जब तक बैठने को न कहा

मैं गोविंद को सिर्फ 3 दिन से जानता हूँ, मुझे उससे लगाव हो गया। अगर मैं छोकरी होता तो मुझे जरूर उससे इश्क हो जाता। और फिर आप तो अरसे से जानती हैं उसे।

0: गोविंद की हालत अच्छी नहीं है।
1: क्या हुआ गोविंद को?
0: 3 दिन में उसका हुलिया बिगड़ गया है।
1: काश मैं उसके लिए कुछ कर सकती।
0: आप कर सकती हैं।
1: क्या?
0: गोविंद को किसी के सहारे की जरूरत है।

अगर बच्चा न मिला तो उसकी हालत और भी खराब हो जाएगी, और अगर मिल गया तो बच्चे को संभालेगा कौन? किसी भी सूरत में से सहारा तो चाहिए। सोच लीजिए, इजाजत चाहता हूँ।

मुनिया होली के होली मनिया डे माल भेजे ए डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे ए होली के होली मनिया डे माल भेजे ए डाल के लिफाफे में सैया गुलाल भेजे किसी की दिवाली आई किसी

पर हम सदैव पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि श्रवंदनों धर्म सभा में शिखर पर विराजमान महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन श्री महा साहब के चरणों में हम सभी की सादर वंदना। विराजमान श्री श्री तीर्थेश्वर श्री जी महाराज साहब, विदुषी महासती वृंद, जीवन के नौ सीक्रेट की यात्रा पर कैसे जीवन को हम अनजाने में उलझा जाते हैं और कैसे जीवन को श्रद्धा बोध पूर्वक सुलझाया जा सकता है,

0: आवश्यकता केवल दो चीजों की है, बुद्धि और श्रद्धा, समझदारी और भक्ति। क्रिया करने का सामर्थ्य तो सब में है, लेकिन बोधि और श्रद्धा, और इस बोधि और श्रद्धा की यात्रा पर निरंतर गतिशील श्रोतागण। कल मैंने एक प्रैक्टिकल करने के लिए आपको कहा था, जिन्होंने किया हो वो हाथ ऊपर करेंगे, नहीं किया हो कोई हरकत नहीं। ओके, मेरी भावना थी कि कम से कम 50% हैंड ऊपर होंगे तो मैं बात को नेक्स्ट क्लास पर ले जाऊं, क्योंकि ये कुछ बातें होती हैं जो प्रैक्टिकल करने के बाद ही आपको पता चलती है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक ये केवल आपके लिए बोझ बनेगी, बोझ। और बुद्धि के साथ आप इसको कर सको, श्रद्धा पूर्वक कर सको, इसलिए मैं कल के ही विषय को पुनः ले रहा हूं। आगे चलना था मुझे, लेकिन आपको साथ में लेकर के चलना है, क्या अच्छा रहेगा? आपको छोड़कर के आगे चला जाओ, नहीं ना, आपको साथ में लेकर के चलना है। तो आपको साथ में लेकर के चलना है तो आपको भी थोड़ा कदम उठाना चाहिए। सारा जीवन का खेल सांसों का खेल है, केवल आयुष्य का ही खेल सांसों का नहीं है, आपके इमोशन का खेल भी सांसों का है, आपके रिलेशन का खेल भी सांसों का है, आपके कैरेक्टर का स्किल भी सांसों का है, आपके डाइजेशन का भी हाथ में सांस के, आपकी नींद भी श्वास के हाथ में, आपका ध्यान भी श्वास के हाथ में। आपने स्वस्थ रहना कि अस्वस्थ रहना, ये भी श्वास के हाथ में। और ये श्वास की गहराई में जैसे आप पहुंचने की शुरुआत करोगे, आपको पता चलेगा कि जिंदगी को चेंज करना कितना आसान है, कि सांसों के साथ प्राण शक्ति जुड़ी हुई है। छोटी सी सांस है ना, लेकिन इस सांस में बाकी 9 प्राणों का, स्वयं के श्वासोच्छ्वास बल प्राण का भी कंट्रोल इस श्वास की प्रक्रिया में। मैंने मालिक बनकर के जीना है कि मैंने फ्लो में बहना है, मैंने परिस्थिति के दबावों में चलना है कि अपनी सोच से चलना है। ये वहां से तय होता है कि आप श्वास कैसे ले रहे हैं, कर्मों दे के कारण से श्वास ले रहे हैं कि श्रद्धा बोधि के कारण से श्वास ले रहे हैं। और श्रद्धा और बुद्धि के कारण से आप श्वास लोगे तो आपको पता चलेगा कि कर्मों को चेंज करना कितना आसान है, उन्हें टेक्निक है। यदि आपको स्वयं को संभालना है, स्वयं के मन को संभालना है, स्वयं के तन को संभालना है, स्वयं के डाइजेशन को संभालना है, स्वयं के नींद को संभालना है, स्वयं के धर्मों को संभालना है, स्वयं के रिश्ते को संभालना है, स्वयं के प्रोफेशन को संभालना है, आप प्रवास कर रहे हो एक्सीडेंट के बिना, पहुंचना है मंजिल पर, पहुंचना है नहीं पहुंचना, ये आपके श्वास के हाथ में है, इस श्वास का खेल है। इसलिए आपको कल से, मैंने परसों से शुरू किया आपके साथ विषय, मैं चाहता हूं कि आप जिन शासन के साथ जुड़े हुए हो तो जिन शासन के पूरे ज्ञान का जितना आप उपयोग कर सकते हो उतना करो। तो इधर उधर दामन फैलाना नहीं पड़ेगा। ये आप सबको पता है कि मैं प्रवेश के लिए मुहूर्त देखता नहीं, दिशा देखता नहीं हूं, पंचांग देखता नहीं हूं। और देव गुरु की कृपा है, बस ये छोटी सी, इसलिए कि हम श्वास की तरफ ध्यान, स्वस्थ रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, बोलिए ना, रहना चाहते हैं। और पूरा जीवन शुरू किससे होता है? श्वास से शुरू होता है। शरीर है लेकिन श्वास नहीं है, इंद्रियां है लेकिन श्वास नहीं है, क्या करेगा शरीर? और क्या वेंटिलेटर के बल पर किसी को जिंदा रखा जा सकता है? क्या ऑक्सीजन देने से कोई जिंदा रह सकता है? कि श्वासोच्छ्वास बल प्राण अंदर होगा तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा। दो ही क्रिया चलती है, आश्रय और निर्जरा। क्या चलती है? आश्रय और निर्जरा। कार्बन डाइऑक्साइड की निर्जरा करनी है और ऑक्सीजन का आश्रय करना है। और ये दो प्रक्रिया व्यवस्थित चलती रही तो शरीर स्वस्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए तो पूरी जगह खाली होनी चाहिए। कैसे लगता आपको? घर में ऊपर ऊपर का कचरा निकाल लिया, बाकी का कचरा ऐसे ही छोड़ दिया, तो कचरा मकान में आपको फ्रेशनेस लगेगा? नहीं लगेगा। वो कचरा कभी भी आगे बढ़ सकता है ना। और आप लोग ध्यान रखते कि काना कोपरे से कचरा निकल जाए, कोई कोने में भी कचरा नहीं बचे, तो ये भी तो मकान है ना। इस मकान में भी तो झाड़ू लगना चाहिए ना, इस मकान में भी तो कचरा बनता ही है ना। एंटीऑक्सीडेंट बनते ही बनते, भोजन करो, क्रिया करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी करो, एवरी एक्शन एंटीऑक्सीडेंट बनने। और वो एंटीऑक्सीडेंट यदि बाहर नहीं निकाले, वही स्टोन बनेंगे, वही ब्लॉक करेंगे, वही बोझ बनेंगे। जो आहार आप करते हैं, मैं करता हूं, वो वीर्य तक पहुंचना चाहिए कि बीच में फैट तक रुकना चाहिए? फैट क्यों बनता है? जो आहार वोझ तक नहीं पहुंचा, सब तो धातु में रूपांतरित नहीं होगा। आहार पर्याप्ति हो गई, शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हो पाई, अधूरी हो गई। इंद्रिय पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं फैट बन जाता है। और फैट बनने के बाद आपको ताकत मिलती कि बोझ बढ़ता है? और वही फैट मसल बन गया तो ताकत मिलेगी। और बनेगी कब? एक छोटी सी कहानी गई आगम में, बड़ी छोटी सी कहानी गई पर बहुत गहरी कहानी गई। एक राजा को संग्रह करने का बहुत शौक था, और संग्रह करना और उसको व्यवस्थित रखना, कर्मचारी नियुक्त कर रखे थे कि उन्होंने कंटिन्यू संग्रहालय बना के रखा था, सारी वस्तु व्यवस्थित रहनी चाहिए। लेकिन आने का फ्लो इतना था कि अंदर की व्यवस्था करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन राजा आया और देखा, बोले ये क्या कबड़ खाना है? तो कर्मचारियों ने कहा, आता इतना है कि हमको कचरा साफ करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो राजा ने पहले कचरा निकालो बोले, पहले क्या करो कचरा निकालो। ये जो ओशराय में आप बोलते हो ना, मिच्छा में दुकड़ बोलते, कितने शब्द बोलते हैं आप, एकदम मिच्छा में दुकड़ बोलते हो, ये ओशराय में बोलते हैं, ये दो शब्द, ये दोनों शब्द निर्जरा के, कचरा निकालने के शब्द है। पवज्जामी शब्द है ग्रहण करने का, और ओशरामी शब्द है मिच्छा में दुकड़म शब्द है निर्जरा करने का। ये प्रक्रिया है, ओशरामी क्या है शब्द नहीं क्रिया है, वर्ब है, क्रियापद है। ओशरामी बोलने से ओशरामी होता नहीं है, ओशरामी की क्रिया होनी चाहिए। और वो क्रिया करनी हो तो श्वास के रहस्य को समझना अनिवार्य है। मैं बहुत बार जिक्र करते रहता हूं, आचार्य भगवान को 92 के एज में भी ना सुनने के लिए कम आता था ना देखने का प्रॉब्लम था, ना गर्दन हिलती थी। व्हाट इज द रीजन? और जहां तक हमें पता है वो कोई लंबी एक्सरसाइज नहीं करते थे, ना तो ना कपाल भाती करी उन्होंने, ना भस्त्रिका करी, ना सूर्य भेदी प्राणायाम करिया, ना चंद्र भेदी प्राणायाम किया है। आप पूछ सकते हैं प्रवर्तक से, को पूछ सकते हैं प्रवर्तक से जी, मेरे से पहले से उनके पास है, लेकिन मैंने जितने दिन रहा उतने दिन तो मैंने कभी उनको करते हुए देखा नहीं। और चेहरा देखो तो कैसे लगता था, यस कि मन थे बाथरूम से बाहर आओ जरा भी थको से चेहरो नहीं रहे, कितनी क्रीम लगाओ, कितनी सोप लगाओ, कितना कहीं लगाओ, फेस वॉश लगाओ। मैंने तो आज तक गुरुदेव जितना चेहरा क्लीन किसी का देखा नहीं। क्या कर कहता है? और मैं फिर कह रहा हूं, कई कभी उनको मैंने शीर्षासन करते हुए देखा नहीं, सर्वांगासन करते हुए देखा नहीं, नहलासन करते हुए देखा नहीं है, मच्छंद्र आसन करते हुए देखा, कोई आसन करते हुए देखा ही नहीं मैंने उनको। एक श्वास उनका इतना गहरा था, इतना गहरा श्वास, इतना गहरा श्वास कि कुछ भी चला जाए तो रिएक्शन आती ही नहीं थी। मराठी में कहावत है ना, उथल पाने ला खड़खड़ाहट फार, ये सो रण अपन पानी किसो है उथड़े, उन्हें खड़खड़ाहट घनी है। और गुरुदेव का पानी गहरा था, क्यों कि प्राण गहरे थे, प्राण गहरे के थे सांस गहरा था। जब तक तुम्हारा सांस गहरा नहीं होता है तब तक तुम कितनी ही विल पावर को बढ़ाने का प्रयास करो, विल पावर बढ़ नहीं सकती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ नहीं सकता है। उसके लिए सबसे पहले क्या गहरा होना चाहिए, सारे सूत्रधार कौन है आपके मेरे जीवन का, सूत्रधार कौन है, मन, आहार, शरीर, दिमाग, नहीं श्वास, श्वास। तो गहरा श्वास लेना है, उल्टी बात कर रहा आज, गहरा श्वास छोड़ना है तुम ना, तुम सेठ लोगों को छोड़ने की बात सिखानी पड़ेगी, लेवन में तो थे मास्टर हो पर अंदर रखने जगह तो चाहिए ना। जितना श्वास गहरा छोड़ोगे उतनी जगह खाली होगी, उतनी जगह खाली होगी, और जितनी खाली जगह होगी उतनी न्यू ईयर से भर जाएगी, नए प्राणों से भर जाएगी। जिस कुएं का पानी निकलता नहीं है वो पानी कुछ दिनों के बाद पीने के लायक रेता नहीं है, उसड़ जाता है। जहां तुम्हारा श्वासोच्छ्वास बल प्राण नहीं पहुंचा वहां के मसल्स डेड हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां से निकला ही नहीं ना कचरा। बहुत कुछ कर लिया आपने, स्वस्थ आहार करते हो, हेल्दी आहार करते हो, और आपके जानकारी के लिए एनीमिया के मैक्सिमम पेशेंट सारे मारवाड़ी समाज में ही है। एनीमिया के जितने केस आपको मिलेंगे ना, हीमोग्लोबिन कब के कहां मिलेंगे, उन सबका डाइट बिल्कुल पौष्टिक है। पौष्टिक क्या नहीं, श्वास गहरी नहीं, श्वास पौष्टिक नहीं, इसलिए इसको शब्द दिया गया पूरक और रेचक। पूरक मतलब पूरण करना, रेचक मतलब खाली करना। अब खाली करोगे तो भर सकोगे ना, और खाली किया ही नहीं, उनके लिए भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ। अमेरिका का एक स्कॉलर जैन साधना पद्धति की स्टडी करने के लिए जापान गया, बहुत सारे जैन साधकों से मिला है। सारे जैन साधक उसको एक मास्टर्स का नाम बताते थे, बोले तू उनको मिलेगा तो ही बात पूरी होगी। और आखिरी में उसने सोचा कि अभी इससे मिलना ही पड़ेगा, क्यों सबने रेफरेंस दिया है, तो गया उसके पास, स्वागत किया उसका, उसने बैठे और इसने शुरू किया, बोले मैंने अमेरिका से आया हूँ रिसर्च करने के लिए आया हूँ, मैं इससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे मिला उससे ये मिला उससे ये मिला उससे ये ज्ञान मिला उससे ये ज्ञान मिला, अब तुम्हारे पास आए हो तुम भी कुछ दे दो। वो मास्टर गुरु था उसने कहा, जापान में एक सुंदर परंपरा है चाय पिलाने की, तो चाय पिलाने की उनकी अपनी परंपरा है, बड़े प्रेम से चाय तैयार हुई। उसके हाथ में वो चाय का कप दिया गया, किटलिंग मास्टर ने अपने हाथ में ली, अब वो कप में वो चाय मुंडे ले चले जाए, कप भर गया तो भी चाय मुंडे ले जाए, नीचे की जो तस्ती थी वो भी भर गई। अब उस स्कॉलर को लगा ये क्या पागल है क्या, हमें इसको रोका नहीं गया तो चाय मेरे हाथ पर आएगी या बॉडी पर आएगी। उसने कहा बंद करो, अभी चाय तो सारी मेरे शरीर पर आएगी, डालो मत, वो मत उंडे लो। वो बैठ गए, बोले समझा तो कुछ, बोले क्या समझना इसमें, मैं तो सोचा था तुम मास्टर गुरु हो और तुम्हें तो चाय कितनी डालनी उतनी अक्ल नहीं, चाय डालना कब बंद करना उतना भी कॉमन सेंस तुम्हारे पास नहीं। और फिर गुरुजी ने बड़े प्रेम से बताया जो ये कमबसी की हालत है वो तेरे दिमाग की हालत है, इतना तेरे अंदर भर चुका है अंदर डालने की जगह ही नहीं, जो डालता वो सारा बाहर जाना है, पहले खाली कर। पहले क्या कर, खाली कर। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र कौन सा पता है आपको, ओशरामी। ओशरामी मीनिंग समझते हो, गिव अप थ्रो, गिव अप थ्रो, छोड़ना छोड़ना। तो छोड़ो कहीं, हेलो हा? छोड़ो कहीं पूछ रही हो, मैं था ने कैरम मास्टर होते, पकड़न में मास्टर हो छोड़न में मास्टर हो, अच्छे पीछे पकड़ता रहे हो, पीछे पकड़ता रहे हो। अरे कभी सोचा क्या, ये दिमाग को तुमने डस्टबिन बनाया है कि लॉकर बनाया है। एक बेटा चेन्नई में मेरे पास आया, बड़ी पीड़ा के साथ आया था। उसने कहा कि पिताजी के साथ मेरा झगड़ा होता है और मैं पिताजी को बहुत गंदे गंदे शब्द बोलता हूं, बाद में मुझे बहुत रिग्रेट होता है, पछतावा होता है, लेकिन जब भी मौका आता है मेरी वही टिप शुरू होती है, मुझे कुछ मंत्र दो। क्या दो? अब मुझे पता है मंत्र कोई काम करता नहीं, मंत्र कोई, मैं उसके साथ बेटा मैंने उसको बताया, एक बात बता, तेरे पिताजी तेरे लिए लॉकर है कि डस्टबिन है? ये सवाल मैं आपको पूछने वाला हूँ, तैयार रही है। तेरे पिताजी तेरे लिए डस्टबिन है कि लॉकर है? बने भर सब, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मेरे मन में आदर है उनके प्रति, नहीं लॉकर है बोले। मैंने कहा लॉकर में कोई कचरा डालता है क्या? तू जो गंदगी डाल रहा है ये कहाँ डालनी चाहिए? और जहां भी तू डालेगा वो क्या बनेगा? जहां तुम गंदगी डालोगे वो बनेगा क्या? लॉकर भी होगा, तुमने लॉकर के रूप में लाया भी होगा, लेकिन कंटिन्यू उसमें गंदगी डालते रहोगे तो कचरा कुंडी बनेगी वो। मैंने कहा एक बार आंख बंद कर और तूने अपने पिताजी को क्या बनाया वो देख। और जो तू उनको बनाएगा उसके साथ तुझे जीना है। तूने पिताजी को कचरा कुंडी बनाया तो तुझे कचरा कुंडी के साथ ही जीना पड़ेगा, कि जो तू उसमें डालेगा वही उसमें रहेगा। अब आपके पास आता हूं, आप अपने परिवार के सदस्यों में क्या डालते हो? हेलो, आप बच्चों में क्या डालते हो? बच्चों में क्या डालते हैं आप लोग? होप्स, मंगल, जितने जितने अशुभ शब्द दुश्मन तुम्हारे लिए प्रयोग नहीं कर सकता, उतने अशुभ शब्द घर वाले प्रयोग करते हैं। यस और नो? मेरी माताओं को पूछो कि वो माँ हाथ ऊपर कर सकती है जिसने अपने बच्चे को कभी मूर्ख नहीं कहा? एक डायलॉग सुनाऊं मैं आपको, ये आती है, मारसा घनो शैतान है, कहिए घनो शैतान है। मैं धीमे से पूछूं, शैतान की मां? अरे तेरे बच्चे को तू शैतान कहेगी तू कौन बनेगी? मार साहब कई नालायक बेटो है मारो, नालायक रो बाप नहीं उठे देखो। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म परिषद के शिकागो की उनके वो यात्रा के बाद पूरी दुनिया में छा गए, ऐसे छा गए कि कीर्ति कहीं की कहीं पहुंच गई। उस समय उनके गुरु भाई ने जो कलकत्ता रहता था उनको एक लेटर लिखा है, उस लेटर में लिखा है कि तुम्हारी कीमत केवल वही लोग कर सकते हैं, यहां भारत में सब गवार लोग हैं, जाहिल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अनाड़ी हैं, इनको आपकी कीमत नहीं है, आप यहां मत आओ, यहां आपकी कीमत नहीं होगी, आपकी कीमत वही पर है, आप वही पर रहो। लंबा लेटर है और लेटर स्वामी विवेकानंद की पत्रावली में छपा हुआ है, उसका उत्तर भी छपा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने पत्र का उत्तर देते हुए पूछा, जिनको तुम जाहिल कह रहे हो, जिनको तुम गवार कह रहे हो, जिनको तुम मूर्ख कह रहे हैं, उनका गुरु कौन है? और गुरु के गुरु चेले को जाहिल कहता हूं तो जाहिल का गुरु है? और स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, मैं आऊंगा, वो देव भूमि है, वहां देवपुत्र है, इसलिए तीर्थंकर महावीर आगम में एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं, देवानुप्रिय। जब भी उनकी बात शुरू होती है, स्वयं में औसम तेनम आयुष्मान या देवानुप्रिय, दो ही शब्द है। सामने वाले में क्या डालना और जिनके साथ तुम रहते उनमें क्या डालना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पचकान लेने के पहले, पचकान बोलो बोलो नहीं वापस बोलो, पचकान लेने के पहले ओश्रामी कर, बिना ओश्रामी करे परमात्मा पचकान देते ही नहीं है। पहले जो तेरे पास है उसको छोड़ेगा तो ही नया ग्रहण कर पाएगा। तो आज के श्वास का प्रयोग आपके पास है, कचरा साफ करना कि नहीं करना, हेलो करना, किसके माध्यम से, थिंकिंग से कचरा साफ नहीं होता है। कितना ही तुम स्वाध्याय कर लो, मुझे क्षमा करना, मैं शायद हो सकता है कि एक्सट्रीमली एग्जांपल दे दूं आपको। सारे जिन शासन के साधु साधियों को एक बात पता है कि संवत्सर की क्षमा पना नहीं हुई तो आत्मा सम्यत्वी नहीं रहती है। वापस आपके लिए रिपीट कर रहा हूं, 365 दिन 12 महीने के बाद भी यदि तुमने वैरानुबंध को समाप्त नहीं किया है तो आत्मा सम्यत्वी रहती नहीं है। और जिन शासन में कई साधु साध्वी है जो संवत्सरी का वेट ही नहीं करते, आपने देखा होगा कि अभिहित प्रेम विजय जी जब भी आते हैं वंदना करते हैं, परंपरा अलग है, वो मूर्ति पूजक है, हम स्थानकवासी हैं, लेकिन संकीर्ति आत्मा वंदन करे बिना रहती नहीं है। रिपीट करूंगी क्या, संकीर्ति आत्मा वंदन करे बिना रहती नहीं है, और वो वंदन नहीं कर रही है तो समझ लेना कि सम्यत्व का स्पर्श नहीं है। मैं रुका हूं कि बात बहुत गहरी चली गई है, आप उसको पचाओ। शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोकृषि जी महाराज साहब तुम्हारे और मेरे जन्मने के पहले 1933 में अजमेर में बृहद साधु सम्मेलन हुआ था। उतना साधु सम्मेलन वापस कभी हुआ ही नहीं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पंजाब, महाराष्ट्र, मारवाड़, राजस्थान, एमपी, चारों ओर से संत उग्र विहार करके पहुंचे थे कि एकता करनी है, संघ एक करना है। ये आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से सुना हुआ प्रसंग आपको दे रहा हूं। और अमलोक ऋषि जी महाराज साहब ऋषि संप्रदाय के आचार्य, 32 आगमों का जिन्होंने अनुवाद किया है, जैन तत्व प्रकाश जैसे अजर अमर कृति लिखी, अभी भी वहां पधारे थे, गुरुदेव भी वहां पधारे थे, लेकिन शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोकृषि महाराज साहब सुबह जल्दी उठते, उस समय कोई लाइट का विषय था नहीं, मुंह पर फिर भी कपड़ा डाल लेते हैं, और जितने साधु हैं जो सोए हुए हैं हर साधु को जाकर के तिखुतो के पाठ से 3 बार वंदना करते हैं। आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब अपने ध्यान साधना के लिए जल्दी उठकर बैठते थे। उन्होंने देखा, उनको लगा कि कोई एक साधु आता है, रोज वंदना करके जाता है, सबको वंदना करता है। तो एक दिन उन्होंने अपने ध्यान को थोड़ा सा पोस्टपोन किया, उस साधु का आने का वेट किया, और वो साधु आकर के वंदना करने लगे तो उनके कंधे पर हाथ रख करके पूछा, मुनि जी आपका नाम क्या है? और वंदन करने वाले संत ने जवाब दिया, मैं अमलोक हूं। आवाज सुन करके मोहन ऋषि मसब हिल गए, बोले आप मुझे वंदना कर रहे हैं, आप हमारे आचार्य हो? इतने सारे छोटे संत सोए, उनको आप वंदना कर रहे हैं, आप आचार्य हो? वंदन तो उनको होती जो तुम्हारे से वरिष्ठ होते हैं, और तुम इन सबको वंदन कर रहे हो। ये सोए हैं और तुम उनको वंदना कर रहे हो। हम लोग कृषि महासभा का उत्तर साथ में लेके जाना है कि क्या पता इनमें से कौन मेरे से उत्कृष्ट बाल ब्रह्मचारी है, क्या पता इसमें से किसकी आत्मा मेरे पहले मोक्ष में जाएगी। और एक मोक्ष में मेरे पहले जाने वाली चेतना को मेरी वंदना हो जाए तो मेरे कर्मों की कितनी निर्जन और मेरा मोक्ष का मार्ग कितना प्रशस्त हो जाएगा। ये सोच, ये इंटेंशन, ये भावना जिसके पास होती है वो सम्यत्वी है। ऐसे तपस्वी राज चंपालाल जी महाराज साहब के पास गुजरात के एक व्यक्ति ने दीक्षा ली थी, जयंती मुनि जी उनका नाम, जिनको महात्मा जी के नाम से पहचानते थे। दीक्षा लेने के पहले उन्होंने तपस्वी राज के पास शर्त रखी थी कि मैं आपके सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, जो भी साधु आएंगे वो किसी परंपरा के रहने दीजिए, किसी संप्रदाय के रहने दीजिए, मैं उनको वंदना करूंगा, मैं उनको वंदना करूंगा मरे। और उस शर्त पर उन्होंने दीक्षा ली। आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं मैंने लोकमान्य संत प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब से सुना हुआ। रूपचंद जी महाराज साहब श्रवण संघ के, और वो जाते थे मिलने के लिए तपस्वी राज को। बाकी कोई संत उनको वंदना नहीं करता था, लेकिन महात्मा जी जयंती मुनि जी उनको उठ बैठ के वंदना करते थे। और वो तो रूपचंद जी महाराज साहब, वो तपस्वी राज चंपल जी महाराज साहब बोलते थे, उनका शब्द मैं नहीं बोलता हूं, उनको बोलते थे कि तुम या मैं मोक्ष में कब जाएंगे पता नहीं, लेकिन हम दोनों के पहले ये मोक्ष में जाएगा। ये सोच, क्या पता है? क्या सुदर्शन को पता था कि अर्जुन मालिक उसके पहले मोक्ष में जाएगा? अरे किसके भविष्य के विषय में तुम क्या बोल सकते हो? भविष्य के विषय में कोई बोल सकता था? केवल सर्वज्ञ बोल सकते हैं। और सोचो, ये सारा जिन शासन का सिद्धांत है। और मैं कई बार बोलता हूं, इस बार बोलने से थोड़ा सा संकोच कर रहा था, लेकिन बोल रहा हूं, यदि मेरे जैन धर्म के सारे साधु साध्वी परमात्मा के सम्यत्वी का एक छोटा सा प्रोटोकॉल फॉलो करें कि संवत्सर के दिन क्षमा करना करे बिना रहना नहीं, तो जिन शासन का नजारा क्या हो जाएगा? आज तो उन लोगों को मैं देखता हूं कि जिनसे दीक्षा ली, जिनसे ज्ञान लिया, सालों तक जिनकी साधना वंदना उपासना के लिए जाते रहे और हल्का सा मतभेद हो गया और वंदनीय तुम्हारे लिए निंदनीय हो गए, धर्म किसको कहते हैं? दुश्मन को दोस्त बनाने को धर्म कहते हैं कि दोस्तों को दुश्मन बनाने को धर्म कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन? आज उनको उनको वंदना करने में पाप लगता है और फिर वो कहते हम साधु हैं, कह लीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन तीर्थंकर महावीर को पूछोगे तो उनका उत्तर एक ही आएगा, ये सम्यति भी नहीं है, साधुपना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो आपसे आग्रह, एक छोटा सा प्रयोग आज लेंगे, शुरू करेंगे। कल मैंने कहा था आपको कि गहरा सांस का प्रयोग करते रहे, आज फिर कहता हूं गहरा श्वास छोड़ने का प्रयोग करते रहे और प्रयोग करके देखें। दिन में कोई ना कोई बात तो ऐसी होती ही है कि जो तुम्हें मुझे चोट पहुंचाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि नहीं नहीं हमारा तो इतनी पुनवानी है कि हमारा कोई सोवियत्स को नहीं होता है, तुम्हारे साथ होता है, मेरे साथ होता है। इतना सोचो, उस कचरे को साथ में लेकर के सोना है क्या? और यदि उस कचरे को साथ में लेकर के नहीं सोना है, एक छोटा सा प्रयोग करोगे, किसी ने आपका इंसल्ट किया, किसी ने आपकी बात नहीं मानी, कोई काम आपका हुआ नहीं, जो आपने कहा वो उसने किया नहीं, ऐसा ऐसा जो भी जिसके कारण से तुम्हारे मन में दुख होता है, जिसके कारण से तुम परेशान होते हो दिमाग, बस एक काम करना है, जोर से श्वास, कम से कम नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो, कितना बोलना है? नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो, नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो, नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो, नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो, नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो। मन में 7 बार बोलने तक निरंतर श्वास छोड़ते ही चले जाना है, निरंतर श्वास छोड़ते ही चले जाना, और ऐसा कम से कम 3 बार करना है, 21 नमो करना, 3 times, और देखना आपका मन कैसे फ्री हो जाता है। चाहे डर हो, चाहे चिंता हो, चाहे आशंका हो, नमो अरिहंतानम सव पाव पनासनो बोलते जाना मन में, श्वास कंटिन्यू छोड़ते जाना, छोड़ते जाना, एक झील, ओनली एक झील, लेडियो की तरफ ध्यान ही मत देना, केवल एक झील, पूरा गहर ऐसे इतना श्वास छोड़ना, इतना श्वास छोड़ना, इतना श्वास छोड़ना, इतना श्वास छोड़ना कि पेट पूरा अंदर आ जाए, और देखना 3 ये प्रयोग करने के बाद उस बात का कितना असर तुम्हारे पर रहता है। करोगे प्रयोग? करोगे प्रयोग? करेंगे ना, कोई कठिन तो कोई नहीं ना, कांटो निकालना ना, तो दिल के कांटे निकालने के लिए नॉलेज काम में आता नहीं। दिल के कांटे थे नॉलेज से निकलते तो प्रवीण ऋषि 25 साल पहले ही सुधर जाता। ये दिल के गड़े हुए कांटे लॉजिक से नहीं निकलते, आगम से नहीं निकलते, ज्ञान से नहीं निकलते, तपस्या से नहीं निकलते, उसके लिए वो प्रक्रिया ही करनी पड़ती है, वो प्रक्रिया ही करनी पड़ती है। तो आपसे आग्रह है, ठोकरें मैंने बहुत खाई है। समाधान केवल एक ही बात का है कि आखिरी सांस के पहले थोड़ी सी अक्कल आ गई और इतना ही तय कर रखा है कि इस जन्म का कोई कर्जा लेकर के अगले जन्म में नहीं जाना है। अगले जन्म में मुझे इस कर्ज के साथ शुरुआत करनी ही नहीं है। राम के लिए भी मेरी इतनी मंगल भावना है कि अगले जन्म में जन्म लेते समय कर्जदार नहीं रहना है। और यहां साहूकार बन करके जाऊंगा तो हां साहूकार बन के जन्मूंगा। जैसे मरेते हैं वैसे जन्मते हैं, बस इतना सा आग्रह है। मंगल पाठ,
1: मंगल पाठ, मंगल पाठ।